समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

श्रोते हो, आत्ताच आपण ऐकलात अधिक मासानिमित्त उपासनेचा विशेष कार्यक्रम अधिक मास महात्म्य। अधिक मास पोथी वाचन भाग्यश्री केसकर। निर्मिती ओरायन स्टुडिओज पुणे। प्रस्तुती भक्तिसुधा।

आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने और स्वर है मन्ना डे।

श्रोते हो, आत्ताच आपण ऐकलात नव्या अभंग आणि भक्तिगीतांचा कार्यक्रम भक्तिरंग. प्रस्तुती भक्तिसुधा. भक्तिसुधा इंटरनेट रेडिओ स्टेशन पर सुनिये ईश्वर भक्ति के अमीट स्वरों का हिंदी भक्ति संगीत कार्यक्रम भक्ति सुमन. भक्ति सुमन सुनिए हर दिन दोपहर 2:30 बजे.

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी और पंडित भीमसेन जोशी जी ने।

0: भक्ति सुधा आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं, अब सुनते हैं किशोरी अमोणकर जी के संगीत और स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना।

श्रोताओं सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी जी का गीत। स्वर है मोहम्मद रफी और नरेंद्र चंचल।

आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने और स्वर है मन्ना डे।

श्रोतेहो, आत्ताच आपण ऐकलात नव्या अभंग आणि भक्तिगीतांचा कार्यक्रम भक्ती रंग. प्रस्तुती भक्तिसुधा. भक्तिसुधा इंटरनेट रेडिओ स्टेशन पर सुनिए ईश्वर भक्ति के अमीट स्वरों का हिंदी भक्ति संगीत कार्यक्रम भक्ति सुमन. भक्ति सुमन सुनिए हर दिन दोपहर 2:30 बजे.

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी और पंडित भीमसेन जोशी जी ने।

0: भक्तिसुधा आत्मोन्नति चा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं, अब सुनते हैं किशोरी अमोणकर जी के संगीत और स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना।

श्रोताओं सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी जी का गीत। स्वर है मोहम्मद रफी और नरेंद्र चंचल।

आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने और स्वर है मन्ना डे।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।